0: तरह भगवान की जय। श्री विश्वगंध परम स्वामी अश्वंत गुरुदेव की जय।
1: Yeah, repeat now, no?

my intellect, my buddhi will be confused, lost, polluted. But he said, but you have to eat today. Master said, no, I will not eat. He said, okay, went away. But inside his, to make his sankalpa, in any case today, he have to eat my food. महाराज ने कहा कि हम नहीं लेंगे डाकू के हाथ का भोजन, चोर के हाथ का भोजन, खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो घोड़े पे चढ़ के चला गया डाकू, लेकिन मन ही मन में विचार करता है, चाहे कुछ भी हो, बाबा जी को आज मेरा ही भोजन खिलाया जाएगा। महाराज ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन एंड दैट डाकू बंडिट वेंट टू वनर restaurant, to some farmer have a little restaurant also. When they saw the bandit is coming, oh God, can you imagine? They thought, today was a Friday and the cat was crossing the way. He came down, they said, yes sir, good morning sir. He said, okay. There is sitting one sadhu 2 kilometers far away under the tree. Take nice food and give him to eat. They said, yes sir, we will do, but here is the money. They said, no, boy, we don't need money, we will do it. We are happy to do for you. He said, no, today I give you money. Next time I will not give, but now today I give you money. कोई छोटा होटल था वहां डाकू को देख करके वो तो बेचारे घबरा गए, अरे वो राक्षस कटवा गयो। घोड़े से उतर के आके बोला कि 2 किलोमीटर दूर महात्मा बैठा है खेजड़ी के नीचे, भोजन कराना है और ये पैसे ले। तो बोला पैसे नहीं चाहिए, हम सेवा कर लेंगे। क्या नहीं, आज तो मैं पैसा दूंगा ही, दूसरी बार आएंगे नहीं लेंगे। जाओ बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके खिला करके आ जाना बस। वेल दे वेंट, दे टुक द फूड एंड दे वेंट टू बाबा जी। बाबा जी सो सम पर्सन इज कमिंग विद द फूड। आओ भक्त, कम वेलकम भक्ता, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड, आई हैव ए लिटिल रेस्टोरेंट। All right. Prabhu, would you accept my food? I said, yes. Tum kaun ho? Ki main chota mazdoor hoon, restaurant hai. Achha. Prabhu, hum aapke liye kuch prasad bhojan laaye, khaiye, khilao beta, kha liya. While eating, his buddhi changed. Now, if you drink slowly, slowly glass milk, you become nice, happy and relaxed. But you drink slowly, slowly vodka or whiskey, after half glass, you feel here zzzz, the bees inside. Huh? Now the Maharaj is thinking, Babaji, आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए। अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को दर्शन कर देना चाहिए। बोरिंग सिटिंग अंडर द ट्री सो मेनी इयर्स, नाउ आई शुड गो टू सम विलेज एंड गिव सत्संग। केम, there was a beautiful small Shiva temple near the village, very near, close. He asked the Pandit Pujari if there's a room. They said, yes, there's one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer,
एंड ही केम टू प्रेयर. देयर वॉज ए ब्यूटिफुल शिवा स्टेच्यू, नॉट ओनली शिवा लिंगम, मेड आउट ऑफ गोल्ड. नाउ द फूड ऑफ द पंडित इज वर्किंग इन हिज ब्लड. दे वी आर मेकिंग प्रेयर एंड ही वॉज हिप्नोटाइज बाय स्टेच्यू गोल्ड. गोल्ड, मैनी ईयर्स ही डिडंट सी एनी गोल्ड. नाउ ही डिसाइडेड टू स्टील द शिवा स्टेच्यू. हाउ टू टेक अवे? ट्रिक. ऑल पीपल वेंट टू स्लीप एंड 2 o'clock he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like Yogesh, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this and he was doing half hour like this. My Lord Shiva, come to me. Come here, my dear Lord Shiva. In my heart, I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out. Sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. बाबा जी गांव के अंदर आए, देखा कि शंकर का मंदिर, पुजारी को कहा कि रहने के लिए जगह है कि ये कमरा है, साधुओं के लिए वहां रुक गया. शाम को आरती में आए, भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी सोने की, करीब 5 किलो की. आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है. बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं. कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं, पार करें. रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया. 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं. घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए. 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा. टेम्पल डोर वॉज ओपन. शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार. He rang the bell long and the village people were running, coming, what happened? Strong people like Jasraji and Premananji, and they were running, came, what happened Panditji? Statue is stolen. Do you know anybody? I don't know any. If I stay anybody here, one sadhu is staying in the room. They went there, there is no sadhu. They took the torch light, they saw the steps running. That time was no concrete Sisi road, you know. There was only sand road. Sandy road, so young people were running and Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए, देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई. पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर. कोई यहां आए थे क्या? बोला एक महाराज रुके हुए, और कोई नहीं है. जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं. बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए. उस समय ये सीसी रोड, डामर की रोड होती नहीं थी. किधर भगा, देखा उनके पैरों के चिन्ह, तो बहुत से लोग उधर, जवान लोग दौड़े,
जाते जाते चार बज रहे थे और प्रभात हो गया, भोर हो गया क्या नहीं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। गाते हो कि नहीं?

पाव। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहां जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता, बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत है। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। हा, तपस्या टीज पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते, आ तू जल्दी कर, स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। डॉन केम एंड द बाबाजी लुक बिहाइंड, दे आर रनिंग सम बॉडी बिल्डर्स। नाउ व्हाट टू डू, इफ आई विल टेल, बाबाजी इज थिंकिंग that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work, sweating, and so many hours already, nearly 18 hours, after eating, that the food of the thief was digested and sweated out. Again, normal intellect appeared. What to do? Luckily, there is always luck in bad luck. There was a beautiful lake. So he ran into the lake and began to bathe the Lord Shiva. And people came, thief, thief. He said, stop, silent, don't talk. Lord Shiva came in the night to me and said, so many years I did not bath. The village people prisoned me in the temple. Please, Swamiji, can you help me to bath? So I promised him, before sunrise, we will bring you back to your holy.

अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश, मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता, तो तीन चार बार गुरुजी फरमाए बोला, तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान? तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा। महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है, तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा? तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरी कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा? तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप। दूसरे दिन आया तो बाप जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी मैं, क्यों कि महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया अनाहत से, आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो। मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को ये अनुभव होता है, गुरु जी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है, वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच ही नहीं रहा है, खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए। अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो? इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर, चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अथ योगानुशासनम, अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा, अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंह नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरी कब मेरा भर से, दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमय कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स, विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड, देन दिस रेडियंस, द रेजोनेंस, व्हेन दिस इज प्यूरिफाइड then you are beyond this all material vibrations, from you is only divine radiance is coming, and anyone who comes closer, sits round you, go round the temple, you are in this abhamandal inside.

वन्दनात् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्. दिस इज गिवन वेरी गुड एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो ऑल द मीनिंग्स एयर, बट वॉट इज इफेक्ट इस रिटर्न शिव पुराण द इफ वी री चेंट 5 lakh 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 फाइव टाइम एंड द शिवा विल अपियर देर. Because if we, like given there, mentioned there, that if we repeat 100,000 Triambakam Yajamahi Sugandhi Pushti Vardhanam, then we clean our all that the negative thoughts away. Second 100,000, it is we remember the past life, how I was, where I was. And third one, that is come Shiva in the dream. And fourth one, it is fulfilling our wishes, what you wish. You want to maybe get moksha, or you want to maybe get your wishes fulfilling. And 100,000, this is a Triambakam Yajame Sugandhi Pushti Vardhana mantra, the time Shiva will appear front of you. It's given there. I didn't practice myself. So we please confidence who want to do the 5 lakh, you know, like almost 500,000. 10 lakh 1 million. So 500,000. त्रियंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात. दिस मंत्र इफ दे रिपीट दे गेट दैट काइंड व्हाट देयर विशेस फुलफिलिंग अकॉर्डिंग द शिव पुराणा. वी आर फॉलोइंग लाइक अकॉर्डिंग वी फॉलोइंग द टेक्निकल थिंग्स हियर व्हाट द टेक्निकल विच प्रेस विच बटन वी प्रेसिंग एंड व्हाट कॉल वी अपियरिंग हियर अदर वी कॉलिंग आई एम हियर एंड इंडिया फ्रॉम इंडिया द पीपल कैन टॉक और यू प्रेस हियर बटन एंड सब फ्रंट ऑफ यू समबॉडी अपियर अकॉर्डिंग द सैटेलाइट सिस्टम. सिमिलरली द कॉस्मिक लाइट एंड स्क्रिप्चर्स ग्लोरी गॉड ग्लोरी एंड अकॉर्डिंग दैट दैट पीपल बिलीव. झा श्रद्धा है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम. श्रद्धा मीन्स एडोरेशन, श्रद्धा मीन्स डेडिकेशन. इफ यू डोंट हैव फेथ नथिंग विल हैपन. फेथ इज रिक्वायर्ड. इफ यू फेथ देन आवर मंत्र आवर अनुष्ठान एंड आवर विशेस विल बी फुलफिल. सो दैट्स ऑल. आई थिंक नाउ इज टाइम टू वी आवर लाइफ इज जर्नी समवेयर टूडे. So we will send one's Om for Vishwaguruji's good health, prayer by through the Om to Vishwaguruji and well-being to all the creatures and prosperity for everyone. So please inhale.

0: श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै
1: श्री गुरवे नमः. Salutations to the Cosmic Self. Salutations to Srila Purujisattva Peet Parampara.

0: ओहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयानंद पुरी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side.

देवादिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

0: महादेव
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद
1: जी भगवान
0: की जय। अनंतपुरी जी महादेव
1: की जय।
0: सत्य सनातन
1: धर्म की जय।
0: ओम
2: विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

0: Panchamante aero to shoot.
1: It's there. Okay, we are starting. Shadeep Narayan ki jai. Ashman ya Pavitra Pavitra?
0: Jai. Ashman. Om Keshavaya Namaha. Om Keshavam Maam Puratu. Om Narayanaya Namaha. Narayanam Maam Puratu. Om Madhavaya Namaha. Madhavam Maam Puratu. Hasto Prakshara Shri Keshavaya Govindaya Namo Namaha. Anjyoti Jyoti Ragnihi Swaha Surjo Jyoti Jyotihi Surjaha Swaha Anivajo Jyoti Varjaha Swaha Surjo Vajo Jyoti Varjaha Surjaha Swaha Bhagwan ko Deepak dikha kar
1: raha hai. Kuch karna hai kya Ashman wagera sab ho gaya?
0: Ashman wagera ho gaya? Usi asan se to.
1: Can I have more flowers please?
0: Yeah, avashyakta nahi. Abhi pujan se uth gaya hai.
2: Here, flowers.
0: Haath mein akshat pushp le karke Agni Devata ka aahwan karna. मतलब प्रणाम करना है ओम अग्नि दूतम पुरोत देह व्यवाहम उपप्रवे देवा आसादयादिया भूर्वः स्वः अग्नये नमः ध्यानम देहराते पुष्पम अक्षतां च समर्पयामि नमस्करोमि कुंड के बाहर ही इसको चढ़ाई बीच वाली जो सीढ़ी है अग्नये नमः ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतां पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि थोड़ा सा जल से अभिसिंचन कर दीजिए कुंड के अंदर थोड़ा सा जल से ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवाल साश्विना श्वेता श्वेताक्ष वर्ण से रुद्राय शुद्धे कृणा जमा अवलिप्ता रुद्र अनुभूत पार जन्या जो ये लोग बैठे हुए हैं इन सबके ऊपर थोड़ा सा थोड़ा जल और जो पूजन की जो सामग्री है इसमें थोड़ा थोड़ा जल पुष्प से लेकर के सभी जगह चढ़ा दीजिए मुखमिया सर्व देवानाम हवे भुक्त विभुक्त तथा पितृणाम च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने इस श्लोक में बताया गया है कि अग्नि देवता कैसे हैं चत्वारि श्रृंगा उनके जो अग्नि देव हैं उसमें उनके चार सिंह हैं त्रयो अस्य पादा उनके तीन पैर
1: हैं इट इज सेड इन द शास्त्रस दैट ही हैज चार क्या है
0: पैर

0: Charles Stringham.
1: Sing a ser.
0: String. Sir.
1: For, not string, it's a Sanskrit word for heads. So it is said in this mantra that fire god has four heads.
0: Trayo asipada, teen pair hain unke.
1: Three legs.
0: Dve shirse, do jo hain unke sar hain.
1: To char kya the pehle?
0: Sting nahi hote hain, sting.
1: Okay, four horns, three legs and two heads.
0: सात हाथ हैं उनके.
1: Seven hands.
0: और सात ही जिह्वाएं हैं.
1: And seven tongues.
0: जिससे वो हवन ग्रहण करते हैं.
1: With which he receives what we offer him.
0: वो महादेव के बहुत ही ज़्यादा अनंत प्रिय हैं.
1: And he is very loved by Mahadev, Shivji.
0: ऐसे जो अग्निदेव हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं.
1: And to that अग्निदेव, to that fire lord, we make pranam.
0: और वो हमारे जो हम भी हवन कर रहे हैं तो उसमें जो गलतियां हों उन्हें क्षमा कर हमें हम जो भी प्राप्त हुई जो हमारी वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करें
1: and
0: और
1: we
0: हमें
1: are
0: हमारे
1: praying
0: कर्तव्य
1: to,
0: पालन में मार्गदर्शन दें.
1: We are praying to Agnidev, to Fire Lord, that whatever mistakes in chanting or in offering we will do in this yagya, we are asking for forgiveness, and whatever we can with our shakti, bhakti, Vairagya, whatever we are offering, please accept it and fulfill all our wishes which we asked you for.
0: जो पांच तत्व हैं उन पांच तत्वों से हम सारी चीजें ले रहे हैं. जैसे वायु है तो वायु से हम सांस ले रहे हैं.
1: From all the five tattvas,
0: we
1: are taking something from the air, wind, we are taking breathing. From water, we are drinking water.
0: तो जो पांच तत्व हैं उन सभी पांच तत्वों को प्रणाम करके उन सभी को ये निवेदित है.
1: And whatever we are offering, we are also offering them.
0: आगे प्रारंभ करते हैं हवन की प्रक्रिया. थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के ध्यान करना है. नवग्रह जो देवता है.
1: We are doing dhyana, we are meditating to all the nine grah, nine planets.
0: Planets.
1: Back and let it be. Later we'll clean up the mess.
0: क्योंकि भगवान के दो पुत्र हैं, धर्म और अधर्म. भगवान के धर्म सामने तरफ रहते हैं और अधर्म पीछे रहते हैं.
1: There are two sons of God. One is dharma and one is adharma. Dharma is in front and adharma is in the back.
0: तो दोनों को आहुति मिलती है. जो अग्नि के अंदर जो आहुति जाती है वो धर्म लेते हैं और अधर्म को जो पुण्य के बाहर जाती है वो अधर्म.
1: So the thing which is going in the fire is for dharma and those which is just falling out is going to adharma. So that both sons can fulfill that.
0: हमारा प्रयास ये रहे कि हम अंदर ही डालें जिससे धर्म की वृद्धि हो और हमारे गुरुजन जो स्वस्थ हैं.
1: And we should try that it goes more inside, but that it goes for dharma and less for adharma. But if it goes out, it's okay.
0: ठीक है, आगे प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे. ओम भूर्भुवस्व गणेशाय स्वाहा.
1: स्वाहा.
0: एक कटोरी में जल लेकर के सामने रख लीजिए आप. चारों दिशा थोड़ा थोड़ा वहीं से बैठे बैठे द्रव्य दक्षिणा इसलिए हम चढ़ाते हैं कदाचित जैसे जो हम सामग्री लेकर के आते हैं उसमें जो दोष हो अथवा उसके अतिरिक्त जो भगवान को प्रिय हो तो वह उससे उसकी पूर्ति हो जाती है.
1: The reason why we offer dakshina or money is because if we couldn't find something or there was some shortage in any type of samagri offerings or things that we bought, then that covers that in that way. Because in the olden times the way of dakshina used to be any type of metal like gold and silver because that was pure, but nowadays we don't have that, so we use money. I mean we have it but we don't want
0: to. थोड़ा सा अक्षत लेकर के जो भी आपने देवी देवताओं को बुलाया है उनसे प्रार्थना करने हैं. आपके आवाहन पूजन में हमसे जो गलती हुई हो, जो कम अथवा ज्यादा जो सामग्री चढ़ गई हो उन्हें क्षमा करके हमारे